0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो
2: औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि

0: इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी लंदन में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सिंध के विरांगे वाले मामले से पीपी के मौकिफ से जमी रहने का फैसलो। जरियन जो चवण है मुलाकात 5 कलाक जारी रही। मुल्क

सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरांगे ख़िलाफ़ हिकु वधीक यकराउ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद सिंध जे विरांगे जो हुकुमरान जमात नून लीग बि नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जी हिमायत में खुलियल नमूने साम्हूं अची वई। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल मुल्क 15 नवां सूबा क़ाइम करण जी तजवीज़ ॾींदे चयो आहे त सिस्टम घुर्बल नतीजा न पियो ॾे, हर सूबे खे टिनि हिसनि में विरिहाइण घुर्जे। मुल्क में नवां सूबा ठाहिण लाइ जाइज़ कमेटी जोड़ी कौमी ऐं सियासी बहस शुरू कई वञे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ इंतज़ामी ढांचे खे पुराणो ऐं इंतज़ामी यूनिटनि खे ज़रूरी करार ॾींदे चयो आहे त सिंध असेंबली पंहिंजो ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी, पर इहो मामिलो वफ़ाक जो आहे। राणा सनावला चयो त सिंध असेंबलीअ मां जेको ठहराउ मंज़ूर थियो अहिड़ा पहिरियां बि मंज़ूर थी चुका आहिनि। अहवाल में तकरीरनि दौरान क़ौमी असेंबलीअ खे गैर ज़रूरी तौर निशानो बणायो वियो। नून लीग 28 तरमीम ते पीपल्स पार्टीअ खे एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। 28 आइनी तरमीम जे तयार कयल मसौदे ते सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह फरियाल टालपुर ऐं सैद नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में 28 आइनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। पीपल्स पार्टीअ जो ख़दशा ख़तम थियण ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ ॾियण जो ऐलान। पीपी अॻवान सैद नवी कमर पार्लियामेंट हाउस में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हू हुकूमत जा मुकमल एतादी त नाहिनि पर उन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत समझे थी साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतनि जो अज़ालो बि थियणु घुर्जे। संदनि शिकायतूं कश्मीर चूंडनि जजिस मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो। एम क्यू एम पाकिस्तान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिये ख़िलाफ़ सिंध असेंबलीअ में ठहराउ जमा कराए छॾियो। सिंध असेंबली सेक्रेटरियट में जमा करायल ठहराउ में चयो वियो आहे त ऐवान अलहदगी पसंद तहरीकनि ऐं सिंधु देश जे नज़रिये खे रद्द करण समेत पाकिस्तान जी ख़ुदमुख्तियारी इतिहाद ऐं इलाक़ाई सालमियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ हर एजेंडा जी मज़म्मत करे थो। ऐवान हिन ॻाल्हि जी तौसीक़ करे थो त सिंध पाकिस्तान जो हिकु लाज़मी ऐं फ़ख्र जोगो हिसो आहे। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली खुर्शीद जो चवण आहे त अॼु खेनि असेंबलीअ में ठहराउ पेश करणु न ॾिनो वियो। स्पीकर दॿाउ में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहं बि ऐवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं। मुख़ालिफ़ धुर सिंध जे विरांगे वारी साज़िश लिखाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि निज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जिनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करण ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीद सिंधु देश जे बयाने खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो आहे त सिंध असेंबली जो कालो को ॾींहुं तारीख़ी हो। धरतीअ जे विरांगे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एम क्यू एम इजलास जो बाइकाट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पीटीआई ऐं जमायत इस्लामी बे ठहराउ

0: एडजस्टमेंट जे मद में बिजली महांगी करे छॾी। माहवार एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपया 6 पैसा ऐं टे माही एडजस्टमेंट में 52 पैसा फी यूनिट महांगी करे। जारी कयल नोटिफिकेशन मौजूद माहवार एडजस्टमेंट जे वाद सितंबर जे बिलनि में लागू कई वेंदी। जुलाई जे फ्यूल एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते 33 अरब रुपियनि जो वाधू बार मुंतकिल थींदो। नेपरा अप्रैल खां जून 2026 ते टे माही एडजस्टमेंट जो फ़ैसिलो वफ़ाक़ी हुकूमत खे उमाणे छॾियो। टे माही एडजस्टमेंट सेप्टेम्बर खां नवम्बर 2026 लाइ लागू हूंदो। वाद के इलेक्ट्रिक जे वापेदारनि ते बि लागू। टे माही एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते 12.67 अरब रुपियनि जो वाधू बार हूंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मर्डिंग करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। नारायण झील हमिलो करे मामी ऐं मामे अर्जन खे संदसि घरवारी प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकिए जो मीरपुर रोड ते कणक जे गोदामनि भरिसां वाकियो पेश आयो आहे। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल कया विया आहिनि। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे। लाड़काने में विन दौरान फोत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ो जे वारसन एसपी चौक ते लाश रखी धरणो हुयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि डॉक्टर्स जी गफ़लत सबबि औरत फोत थी आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सूबा चो या इंतजामी यूनिट से MQM पांजे मौकब ते बीठल आए। MQM पांजो मौकब तब्दील ना आए कयो। भुट्टे जे ठहल आईन में नवन सूबन की गुंजाइश मौजूद आए। कराची मीडिया से गलाईंदे MQM अगवान मुस्तफा कमाल चयो आए त पाकिस्तान जो पैसो चैन सूबन बदरा 20 माणन में विरायजे तो। सिंध में 18 सालन का पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। सूबे में बुनियादी सहूलतू ना आन एक गटरो भी संभाले नथा सगन। शहर की हालत बेनताई खराब आए। पेट्रोलियम लेवी के मद में अवाम का रिकॉर्ड उगाड़ी। शहबाज शरीफ में अवाम मुल्की तारीख जो महंगो तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम का लेवी के मद में 3,137 अरब का वधीक उगाड़ी कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीजल फी लीटर 233 ए पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महंगो विक्रो कयो। इन वक्त भी पेट्रोल ए डीजल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आए। जडे त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग उगाड़ी वेंदी आए। अमेरिका सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर जा नंढा बम विक्रो करण की मंजूरी दई छी। 750 मिलियन डॉलर जो IGT इंजनू भी डिन्यू वेंद। अमरीकी परडेही खाते तजी कंदे हथियार की फरहमी से सऊदी अरब दिफाई सलाहियत बेहतर थी। कराची की अदालत में गुल प्लाजा केस की बुधनी। पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। 11 साल के हुजैफा जो केस अलग होंद। दखण की अदालत में केस की बुधनी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ए बिया अदालत में पेश थे। पुलिस चालान से गड 85 शाहिद की फरस्त भी अदालत में जमा कराए छी। बिरया सिटी में अवामी तहरीक के इम्कानी विरहांगे खिलाफ रैली। सिंध के हिस्से जो पानी देने जो भी मुतालबो किया। अगवाणन मूजिब सिंध के विरहण वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी। सिंध खिलाफ साजिशों बंद कर सूबे के पानी समेत समूरा आईन या कढ़ना वन। नवाबशाह खेरपुर में पेटीएल के मुतालबन की मंजता लाए रैली ए धरणो। प्राइमरी उस्तादन शिराज चौक का एहतजाजी रैली कड़ी। प्रेस क्लब आड़ो धरणो। अगवाण बैराड़ी के स्कूलन में फर्नीचर समेत मुख्तलिफ सहूलत की खोट आए। हुकूमत स्कूलन ए उस्तादन जा जायज मसला हल कया वन। खिपरो में जवाबदार मामे ए मामी के कोडर जा वार करे मर्डिंग करे छड़ियो। जवाबदार गिरफ्तार। नारायण भील हमलो करे मामे अर्जन ए संदस घरवारी प्रेमी के जख्मी कयो। वाक्यो मीरपुर खास रोड ते कणक के गोदाम भरसा पेश आयो। जख्मी जाल मुड़स अस्पताल मुंतकिल। जवाबदार गिरफ्तार। पुलिस मूजिब वाक्यो पुराने तकरार जो नतीजो आए। लाड़काने में वियम दौरान फौत थियल औरत के वारसन जो लाश रखी धरणो। जिम्मेवार डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासन औरत नाजिया जाल अब्दुल शकुर कलोड़ के वारसन SSP चौक ते लाश रखी धरणो हो। मुजाहिरन मूजिब डॉक्टर की गफलत सबब औरत फौत थी है। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे। ए ठुल में 4 साल अग कतल थियल नींगरी अब्दुल गनी दाऊद पुट जा कातिल गिरफ्तार न थिया। वारस एहतजाजी एहतजाजन शहर छड़े व्या। गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की मजार आडो एहतजाज करण जो ऐलान। मकतूल नींगर के वारसन मूजिब पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करण में नाकाम आई है। कातिल गिरफ्तार कया वन।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम अखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
3: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवती।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: छा तवान जोड़न जे सूर पुट हथनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो, छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257 86।
0: जी हा, 3135525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सूबा चौ या इंतजामी यूनिट एमकेएम पांजे मौकफ ते बीठल आए एमकेएम पांजो मौकफ तब्दील ना है कयो भुट्टो जे ठायल आईन नवन सूबन की गुजाइश मौजूद है। कराची में मीडिया से गलाइंदे एमकेएम अगवान मुस्तफा कमाल है तो पाकिस्तान जो पैसो चैन सूबन पंद्रह वी मान में विरजे तो सिंध में अरड़ साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबे में बुनियादी सहूलतू ना एक गटर भी संभाले ना सकन शहर की हालत भी खिनता ही खराब है।
1: पेट्रोलियम लीवी के मद में अवाम का रिकॉर्ड उगाड़ी शहबाज हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख जो महंगो तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम का लेवी के मद में 3,170 अरब का वधिक उगाड़ी कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीजल फी लीटर 233 पेट्रोल 170 रुपया फी लीटर महंगो विक्रो कयो। इन वक्त भी पेट्रोल एंड डीजल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल है। 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग उगाड़े वेंदी है।
0: पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी की अगवाणी में रैली ठारू शाह का पहुंची वही। सोहेल आफरीदी कौमी असेंबली के अगूणे डिप्टी स्पीकर जफर अली शाह से भी मुलाकात कई। सोहेल आफरीदी तो जमहूरियत लाए जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची की अदालत में गुल प्लाजा केस की बुधनी पुलिस आलान अदालत में जमा कराए छो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार 11 साल की उज़ैफा जो केस अलग हल्द दखण की अदालत में केस की बुधनी थी है। जवाबदार तनवीर पास्ता बया अदालत में पेश थे। पुलिस चालान से गड 85 शाहिदन की लिस्ट भी अदालत में जमा कराई।
0: कंदकोट वेझो मुड़स कारा इल्ज़ाम हेठ ज़ाल खे कतल करे छॾियो। ए सेक्शन थाणे जे अध गोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कारा जे इल्ज़ाम हेठ कतल कयो। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी विया आहे। खेसि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वधीक जांच बि जारी आहे।
1: मलीर में सिटी पुलिस की मुबैना तशद्दुद में मारजी वयल नौजवान के वारसन जो धरणो। पुलिस नौजवान के वारसन के कौमी शाहरा से धरणो हण का रोके छो। नौजवान इरशाद बलोच के वारसन मेमण गोट रोड से धरणो हो। वारसन मूजिब नौजवान के बेगुनाह कतल किया है। इंसाफ कयो वञे।
0: दरिया सिटी में अवामी तहरीक के सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली। सिंध के हिस्से जो पानी दियण जो भी मुतालबो किया वो। अगवाणन मूजिब सिंध के विरायण वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी। सिंध खिलाफ साजिशूं बंद कर सूबे के पानी समेत समूरा आईनी हक डना वजन।
1: नवाबशाह ए खैरपुर में पेट ए अलिफ के मुतालबन की मंता ला रैली ए धरणो। प्राइमरी उस्तादन शिराज चौक का रैली कढ़ी प्रेस क्लब आडो धरणो है। अगवाणन है तो बैराड़ के स्कूलन में फर्नीचर समेत मुख्तलिफ सहूलतन की सख्त खोट है। हुकूमत स्कूलन उस्तादन जायज मसला हल कया वजन।

खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मणी करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार नारायण भील हमिलो करे मामे अर्जुन ऐं संदसि घरवारी प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकियो मीरपुर ख़ासि रोड ते कणक जे गोदाम भरिसां पेश आयो। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे।

लाड़काणे में विम दौरान फौत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो, ज़िमेवार डॉक्टर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ जे वारसन एस पी चौक ते लाश रखी धरणो आयो। मुज़ाहिरीन मूजिब डॉक्टर्स जी गफ़लत सबबि औरत फौत थी आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जेकर तवाखे मेदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, ऐं औरतुन ऐं बारड़न तुंहिंजे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी।

0: मर्जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: कारोबार की तरक्की लाइ सोचे रहा आयो
0: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86।
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दाना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सूबो जो या इंतजामी यूनिट एमकेएम पांजे मौकफ ते बीठल आए। एमकेएम जो पांजो मौकफ तब्दील नाए कयो। भुट्टे जे आईन ठेल में नवन सूबन जी गुंजाइश मौजूद है। कराची में मीडिया से गलाइंदे एमकेएम अगवान मुस्तफा कमाल चयो आए त पाकिस्तान जो पैसो चयन सूबन बदरा वीह माणन में विरायजे तो। सिंध में अरिड़हं सालन खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आए। सूबे में बुनियादी सहूलतू न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालत बि इंताई ख़राब आहे।
1: ही कॾहिं सिंध जे विरांगे ऐं कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। बिठो मयार ख़तम थियण घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि न ही भाई सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त कराची खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरियां पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो। हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपयनि जी बजट जो हिसाब ॾे।
0: पेट्रोलियम लेवीअ जे मद में अवाम खां रिकॉर्ड ट्रोड़ो गाड़ी। शहबाज हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख़ जो महांगे तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम खां लेवीअ जे मद में 3137 अरब खां वधीक उगाड़ी करे चुकी। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीज़ल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्त बि पेट्रोल ऐं डीज़ल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे, जड॒हिं त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़ी वेंदी आहे।
1: जमायत इस्लामी तेल जे अघनि में वाद ख़िलाफ़ हुकूमत खे फीथा रोक हड़ताल जो चिताव ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत मसलो हल न कयो त फीथा रोक हड़ताल तरफ़ ईंदासीं। पेट्रोलियम लेवी जो तेल जे अघनि सां को बि वास्तो नाहे। हुकुमराननि ऐं ब्यूरोक्रेसीअ जे ऐशनि जो बार ग़रीब अवाम ते विधो पियो वञे। आलमी मंडीअ में तेल महांगो थी रहियो आहे त पेट्रोलियम लेवी ख़तम करे छॾियो।
0: पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी। केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी अॻवाणीअ में रैली ठारू शाह पहुची वई। सोहेल आफरीदी क़ौमी असेंबलीअ जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर ज़फर अली शाह सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदीअ चयो त जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार। सालन जी उज़ैफा जो केस अलॻि हलंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी लिस्ट बि अदालत में जमा कराई।
0: कंदकोट वेझो मुड़ुस कारण इल्ज़ाम हेठि ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ए सेक्शन थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कारण इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। पुलिस मूजिबि जवाबदार फरार थी वियो आहे। खेसि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वधीक जांच बि जारी आहे।

0: मलिर में सिटी पुलिस ने मुबैना तशद्दुद में मारजी वयल नौजवान जे वारसन जो धरणो। पुलिस नौजवान जे वारसन के कौमी शाहरा ते धरणो हणण खां रोके छॾियो। नौजवान इरशाद बलोच जे वारसन मेमण गोड़ रोड ते धरणो हयो। वारसन मूजिब नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो। इंसाफ़ कयो वञे।
1: सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ अवामी तहरीक जो ठटे टंडो जान मोहम्मद ए बिरया सिटी में मुख्तलिफ रैलियो। सिंध के हिस्से जो पानी डेण जो भी मुतालबो किया। अगवान मूजिब सिंध के विरायण वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी। सिंध खिलाफ साजिशू बंद करे सूबे के पानी समेत समूरा आइनी हक डिना वजन।
0: सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पेटे अलिफ के मुतालबन की मंचा ला एहतजाज। स्कूलों के सहूलतों डेण जो भी मुतालबो। हैदराबाद मटियारी नवाबशाह सागर ए खैरपुर में प्राइमरी उस्ताद एहतजाज कर। अगवाणन तालीम खातों प्राइमरी उस्ताद जायज मसला भी हल कर तैयार ना। उस्ताद जहा मसला हल क्या वजन।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2073।

0: आज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586
3: जी हाँ बुड़ी 3315257686
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: फसल भरपूर खिले।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03132525786।
3: जी हा 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बनाने के लिए तैयार हैं, हम डिवीन बनाने के लिए तैयार हैं, हम जिले बना सकते हैं, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं बनने चाहिए। इसकी वजूहात बहुत सारी सियासी जो आप सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उन सब चीजों के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब बात आती है कि पावर निचली सतह पर चली जाए तो उसके ऊपर हर एक को एतराज हो जाता है। अभी ये इतराज दूर करना है। आपको किसी ने नहीं कहा कि हम किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज होने देंगे। हम सब जो यहां लोग बैठे हुए हैं, हम सब इस ओथ पे हैं कि हमने किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज नहीं होने देनी है, लेकिन आईन में रह के तो हमारे पास बहुत पावर है। आज सिर्फ दो तीन चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा जो आप सब लोगों ने कही कि 79 इयर्स में हम सिर्फ 2.5 करोड़ बच्चा है जो आज भी स्कूल नहीं भेज सके। आज भी 10 में से 4 बच्चे हैं जिसको हम गजा प्रोवाइड नहीं कर सके। ये सब बातें आप लोगों ने आज सुबह से करी हैं। आज भी सिर्फ 55% पाकिस्तानी है जिसको पानी साफ नहीं मिल रहा। और चेयरमैन के साथ माजरत से, आज सिर्फ अदालतों में 20 लाख केसेस हैं जो लोग धक्के खा रहे हैं और इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। ये किसी एक हुकूमत का रिजल्ट नहीं है, ये हमारा 79 इयर्स का रिजल्ट है। ये सिर्फ फैक्ट्स वो नहीं है, ये वो फैक्ट्स हैं जो हम ऑफिशियली रिकग्नाइज करते हैं और इसके ऊपर हम दिन रात बैठ के कोशिश करते हैं कि इसको ओवरकम कर लें। आज भी वो वालिद और वालदा अपने बच्चों को स्कूल के जाने के लिए, हेल्थ के लिए और अपनी जस्टिस के लिए उसी तरह मुंतजर हैं जिस तरह आज से हमारे अबाउ अजदाद 79 ईयर्स पहले थे। हम सब अपने यूथ की बात करते हैं। आपका यूथ सिर्फ आपसे दो तीन चीजें मांगता है कि मेरे लिए रोजगार कहां है, जब मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता हूं तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पे अवेलेबल हैं, और अगर वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो क्या वो मेरिट पे हैं, और क्या मुझे अपने इलाके के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं।

हामिद मीर साहब ने सुबह इस्लामाबाद की बात की, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सुबह इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हामी हूं और मैं मुतअद्दिद फोरम्स पे ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान में हर शहरी को उसका एनएफसी अवार्ड मिल रहा है। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो इस्लामाबाद के बेचारे शहरी हैं जिनको एनएफसी का कोई एक रुपया नहीं मिलता है। सीडीए अपनी जमीनें बेचकर उस शहर का निजाम चलाती है। हम सबके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे सीडीए के बारे में, लेकिन इस्लामाबाद वो वाहिद शहर है जिसको पूरे पाकिस्तान के किसी बजट से एक रुपया भी नहीं मिलता है। तो क्या इस्लामाबाद के शहरी पाकिस्तान के शहरी नहीं है? तो इसलिए अगर कोई सूबा बनना है तो बिल्कुल इस्लामाबाद वो केस है जिसको ऊपर हम सबको लबैक कहना चाहिए और हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। ममदानी, सादिक खान, उर्दुगान, ये सब वो लोग हैं जो मेयर बने और मेयर बन के उन्होंने निजाम चलाए। और मैं आज भी समझता हूं कि जो मेयर बन के आगे आता है वो हुकूमत चलाना बहुत बेहतर जानता है। उसको आम आवाम का मसला पता होता है और उसको वो मसाइल पता होते हैं जो मेजोरिटी पॉलिटिशियंस को और हुक्मरानों को नहीं पता होते। मीर साहब अब जो मर्जी कुछ कर ले, ममदानी तो अब आएंगे और सादिक खान भी आएंगे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GAFM 90.4।
1: आवाज भी मातली की है।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257-86।
5: जी हाँ 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो?
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

नथो सघे इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमतन जी तादाद वधाइण न पर निज़ाम के बेहतर करण आहे। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख्तियार हेठीं सतह ते मुंतकिल थींदा। नौकरीअ ते रहां या न रहां मामले तां पोइते न हटंदुसि। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवनि इंतज़ामी यूनिट सां पंजाब या सिंध जी सुञाणप तब्दील न थींदी। नवां इंतज़ामी यूनिट बि नस्ल या बिरादरी जी बुनियाद ते न पर बहितर हुकमरानीअ लाइ ठहणु घुर्जनि। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करणु न पर निज़ाम में मौजूदु खामियुनि खे ख़तमु करणु आहे। नओं सूबो ठहणो आहे त इस्लामाबाद खे सूबे जो दर्जो मिलणु घुर्जे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदारनि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। पाकिस्तान जी मफाद में थींदड़ फैसला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा। नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बे बुरी अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नवन नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आब हयात पखिड़जी वेंदो। आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भले जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ न पवंदो। मुमलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो त सुठी हुकूमत निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे अख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी अख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि। पंजाब सिंध के पी के ऐं बलोचिस्तान जा रूट्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराउ में आहिनि। आइनी फ़राड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमना हूंदी। सूबा चओ या इंतज़ामी यूनिट एम क्यू एम पंहिंजी मौक़िफ़ ते बीठल आहे। एम क्यू एम पंहिंजो मौक़िफ़ तब्दील नाहे कयो। भुट्टो जी ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे, सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि, शहरनि जी हालति बि इंतिहाई ख़राब आहे।

इहे कॾहिं सिंध जी विरांगे ऐं कॾहिं वरी इंतिज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। बिटो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। इहे माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि न ई भाईअ सां सचा आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो त कराचीअ खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुआ। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौरु आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजेट जो हिसाब ॾे। लंडन पाकिस्तान जी सियासी मुलाकातनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि चयो आहे त आज़म नज़ीर तारड़ जी सदर आसिफ़ ज़रदारीअ सां मुलाक़ात बाद 28 आइनी तरमीम ते मुस्बत अगभराई थी आहे। बिलावल सां मरियम जी मुलाक़ात में बि आइनी तरमीम ते ॻाल्हियूं थींदियूं। इस्लामाबाद जी पिम्स थाने जी जांच जारी। पिम्स थाने जे मुअतल कयल 8 आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। 8 ई आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत 8 आफ़ीसरनि जा नाला ECL में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2315-2570-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है। ये वो चीज है जो अगर पब्लिक के दिल की आवाज है तो ये हर सूरत होगी और इंशाल्लाह होती रहेगी।
1: जज्बाती न थियो, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके नथो सके। इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमत की तादाद बढ़ाने न पर निज़ाम के बेहतर करना है। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहो, रुगो अख्तियार हेठी सतह तीन मुंतकिल नौकरी से रहा या न रहा मामले का पोते न टंदुस। लाहौर में तकरीब का खिताब करें वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी चयो तो मामले से सियासतदानन का वधिक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवन इंतजामी यूनिट से पंजाब या सिंध की सुणप तब्दील न थी। नवा इंतजामी यूनिट फिर नसल या बिरादरी की बुनियाद से न पर बेहतर हुकमरानी लाय ठहण घुर्जन। मौजूदा निज़ाम नतीजा न दई रो है, रीसेट करणो पवो। असो मकसद हुकूमत या सियासी जमात के तब्दील कर न पर निज़ाम में मौजूदा खामियन के खत्म करना है। नव सूबो ठहणो है तो इस्लामाबाद के सूबे जो दर्जो मिलन घुर्ज। नवन इंतजामी यूनिट्स से घबराने की जरूरत ना है। मामले से सियासतदान का वधिक अवामी राय अहम है। पाकिस्तान के मफाद में थींदड़ फैसला सभी के तस्लीम करना पवंदा। पीपल्स पार्टी सिंध इम्कानी विराग के खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव पास थे बावजूद वफाकी वजीर की तकरारी बयान के सूबे की आइनी हैसियत में गैर आइनी मुदाखलत करार दई छो। समूरी सिंध में एहतजाज जो फैसलो, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े की सदारत हेठ पार्टी जो अहम इजलास। सिंध विराग के खिलाफ ठहराव मंजूर थे बावजूद वफाकी वजीर पारा नवन सूबन इंतजामी यूनिटन बाबत दिनल बयान के सख्त लफ्जन में मजम्मत कई वही। सिंध इम्कानी विराग के खिलाफ डिवीजन्स जिलन ए तालुकन में एहतजाज जो फैसलो। इजलास में तो वजी अजम वफाकी वजीर के नवन सूबन इंतजामी यूनिटन बाबत बयान जो नोटिस वे अड़ा बयान देने का रोके। सिंध असेंबली में ठहराव मंजूर कर पीपीएमपीएस सदर आसिफ अली जरदारी बिलाल भुट्टो के भेटा पेश। सिंध के विराग के खिलाफ करारदार से वोटिंग में हिस्सों न वर जमातन के सख्त तनकी। नवा सूबा ठहण से मसला हल ना, मुस्तकिल हल घुरण पवो। अगोड़े वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवन सूबन बाबत नेशनल पॉलिसी डायलॉग के खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी सूबाई हुकूमतू बादशाह का भी बुरे अंदाज में हली रही। बादशाह भी मुशावरत कंदा हुआ, असाजा सूबा हिदायतन से हली रहा है। नून लीग के फज साद रफीक नंढा सूबा ठहण से आबिहार पखड़ी वो आइन की तोहीन करनी है तो कोई भली जेतरा बणो सूबा ठाए छो को भी फर्क न पवो। ममलकती वजीर अरुण चौधरी तरक्की याफ्ता मुल्क में नंढा इंतजामी यूनिट कायम आन। नवन इंतजामी यूनिट्स से पार्लियामेंट अंदर बाहर बहस थन घुर्ज। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान है तो सुठी हुकूमती निज़ाम लाय वा सुधारा आना पवंदा। अवामी नुमाइंदन के अख्तियार दियण बिना मामला अगते न वधंदा। इंतजामी इख्तियार चूंडियल नुमाइंदन वट हुजण घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ए बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिजनेस आइन से टकराव में आन। आइनी फ्रॉड की मौजूदगी ताई सुधारन की गाल पे मायने होंगी। इंतजामी सुधारा सूबन के नए सिर जोड़ जक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला सूबा रुगो इंतजामी यूनिट ना पैंजी तारीख सुणप सकाफत बोली आइनी हैसियत है। सिंध जो अवाम पैंजी सरजमीन तारीख ए सुणप के बारे में बार बार वाजे ए गडियल राय दई चुको है। सिंध अवाम की राय जो एतराम थियण घुर्ज। सूबाई वजीर आसिफ हुसैन शाह जो वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी के बयान से रद्द अमल। आसिफ शाह मोहसिन नकवी से बेहतर हुकमरानी मौसर निज़ाम ए अवाम की सहूलत लाय सुधार की जरूरत इतफाक है। इंतजामी इख्तियार अवाम के वेझो आन मकसद है तो यो कम मौजूदा आइनी ढांचे में भी कर सकते तो नवा डिवीजन जिला ए तालुका ठाए सकजन था। इख्तियार हेठी सतह से मुंतकिल कर सकजन था। वो सुधारण लाय हर मुस्बत तजवीज से गल तैयार आन पर सिंध की वहदत का भी सौदेबाजी नथी कर सकजे।

सूबा चौवीह इंतज़ामी यूनिट एम क्यू एम पंहिंजो मौक़िफ़ ते बीठल आहे। एम क्यू एम पंहिंजो मौक़िफ़ तब्दील नाहे कयो। भुट्टो जे ठहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो फ़ैसिलो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहरनि जी हालत बि इंतिहाई ख़राब आहे। ही कॾहिं सिंध जे विरागे ऐं कॾहिं वरी इंतिज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। मिटो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर सां सचा आहिनि, न ई भाई सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो त कराची खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुआ। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजट जो हिसाब ॾिनो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे
1: तकरीर हो रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो सकता, किसी एक सूबे का फैसला नहीं हो सकता। हुकूमत को बैठना चाहिए, अपोजिशन को बैठना चाहिए, सूबों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये है कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
2: जज्बाती न थे इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके न सके। इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमतन की तादाद वधाण न पर निजाम के बेहतर करण है। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहो, रुगो अख्तियार हेठी सतह से मुंतकिल नौकरी से रहा या न रहा मामले तो न हटंद। लाहौर में तकरीब के खिताब कदे वफाकी गुरु

0: मुतासिर मोहसन नकवी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवनि इंतज़ामी यूनिट सां पंजाब या सिंध जी सुञाणप तब्दील न थींदी। नवा इंतज़ामी यूनिट बि नसुल या बिरादरी जी बुनियाद ते न पर बहितर हुकमरानीअ लाइ ठहणु घुर्जनि। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करणु न पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तमु करणु आहे। नओं सूबो ठहणो आहे त इस्लामाबाद खे सूबे जो दर्जो मिलणु घुर्जे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत नाहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा। पीपुल्स पार्टीअ सिंध जी इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध असेंबलीअ मां ठहराउ पास थियण बावजूद वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे तकरारी बयाननि खे सूबे जी आइनी हैसियत में गैर आइनी मदाख़लत करार ॾेई छॾियो। समूरी सिंध में एहतजाज जो फ़ैसिलो। पीपुल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खुड़ो जी सदारत हेठि पार्टीअ जो अहम इजलास। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति ॾिनल बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई। सिंध जी इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ डिवीज़न ज़िलनि ऐं तालकनि में एहतजाज जो फ़ैसिलो। इजलास में चयो वियो त वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति बयाननि जो नोटिस वठे ऐं अहिड़ा बयान ॾियण खां रोके। सिंध असेंबलीअ मां ठहराउ मंज़ूर करण ते पीपुल्स पार्टी MPS सदर आसिफ ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो खे भेटा पेश। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ क़रारदाद ते वोटिंग में हिसो न वठंदड़ जमायतुनि ते सख़्त तनक़ीद। सिंध जी वहदत बाबति वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयान ते सिंध हुकूमत जो सख़्त रदअमल। सीनियर वज़ीर शर्जीलना मेमन चयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बयानबाज़ी सूबे ख़िलाफ़ सियासी जारियत जे बराबरि आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वाज़े करे त ख़्वाजा आसिफ जो बयान हुकूमती पॉलिसी आहे या संदसि ज़ाती राय। ख़्वाजा आसिफ सिंध ऐं पीपुल्स पार्टीअ ते बयानबाज़ी खां पहिरियां तारीख़, आइन ऐं पार्लियामानी रिकॉर्ड जो मुतालो करे। पीपुल्स पार्टीअ जो मौक़िफ़ बरुखी न पर चिठो असूली ऐं आइनी आहे। पंजाब असेंबली सराइकी सूबे जे हक़ में ॿ भेरा ऐं सिंध असेंबली सिंध में नवनि सूबनि ख़िलाफ़ 8 भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह घरू वज़ीर मोहसन नकवी जे बयान ते रदअमल ॾींदे चयो आहे त इंतज़ामी सुधारा ऐं सूबे जी नई सिर जोड़ जक बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि। सूबा रुगो इंतज़ामी यूनिट न आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजी तारीख़, सुञाणप, सकाफ़त, ॿोली ऐं आइनी हैसियत आहे। अवाम जी राय जे एतराम जी ॻाल्हि आहे त सिंध जे अवाम जी वाज़ राय जो बि एतराम थियणु घुर्जे। सिंध जी वहदत ते का बि सौदेबाज़ी नथी करे सघिजे। नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरी अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबे हयात पखिड़िजी वेंदो। आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ न पवंदो। मुमलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान चयो
1: बच्चों के हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में मेरी स्मार्ट चॉइस है डालडा स्टैंड अप पाउच, क्योंकि ये है
0: पंजाब सिंध KP एंड बलोचिस्तान जा रूट्स ऑफ बिजनेस आइन सा टकराव में आहिन। आइनी फरार जी मौजूदगी ताई सुधारण जी गाल बेमाना हुंदी। सूबाचो या इंतज़ामी यूनिट MQM पंहिंजे मौक़िफ़ ते बीठल आहे। MQM पंहिंजो मौक़िफ़ तब्दील नाहे कयो। भुट्टो जे ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे MQM अॻवान वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त पाकिस्तान जो पैसो 4 सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली।
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
9: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
9: जी हाँ 2-31-25-25-786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2311-2525-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

आवाज, अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-8879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर
4: 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ

0: उड़ी 347 बट्टी 41 200
1: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आजकल बहुत सारी जज्बाती तकरीर हो रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो सकता, किसी एक सूबे का फैसला नहीं हो सकता। हुकूमत को बैठना चाहिए, अपोजिशन को बैठना चाहिए, सूबों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये है कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
2: गैर जज्बाती न थिए, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके नथो सघे। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख़्तियार हेठी सतह ताईं मुंतकिल थींदा। दखण या उत्तर पंजाब ठहण सां पंजाब जी हैसियत ख़त्म न थींदी। ईअं ई सिंध में इंतज़ामी यूनिट ठहण सां सिंधियुनि खां को पंहिंजी सुञाणप कसी न सघंदो। ऐं हिन नौकरी ते रहां या न रहां, मामले तां पोइ ते न हटंदुसि। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो लाहौर में तकरीब के ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करणु न पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तम करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत नाहे, मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओ सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुर्जे। ऐं हुन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।

0: नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख़्वाजा सादिक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबिहात पकड़िजी वेंदियूं, आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। मुमलकती वज़ीर अरुण चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइम आहिनि, नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा, अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि, आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमानी हूंदी। पीपल्स पार्टी सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ सिंध असेंबली मां ठहराउ पास थियण बावजूद वफ़ाकी वज़ीरनि जे तकरारी बयाननि खे सूबे जी आइनी हैसियत में गैर आइनी मुदाख़लत करार ॾेई छॾियो। समूरे सिंध में एहतजाज जो फ़ैसिलो, पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो जी सदारत हेठि पार्टी जो अहम इजलास। सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद वफ़ाकी वज़ीरनि पारां नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति ॾिनल बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई। सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ डिवीज़न ज़िलनि ऐं तालुकनि में एहतजाज जो फ़ैसिलो। इजलास में चयो वियो त वज़ीर आज़म वफ़ाकी वज़ीरनि जे नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति बयाननि जो नोटिस वठे ऐं अहिड़ा बयान ॾियण खां रोके। सिंध असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर करण ते बीपी एमपीएस सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो खे भेटा पेश। सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ क़रारदाद ते वोटिंग में हिसो न वठंदड़ जमायतनि ते सख़्त तनक़ीद।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ,
3: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-230।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
4: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी जी माहिर डॉक्टर अदीद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो नथियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रा

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
0: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर,

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
4: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो सकता, किसी एक सूबे का फैसला नहीं हो सकता। हुकूमत को बैठना चाहिए, ऑपोजिशन को बैठना चाहिए, सूबों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, माहरीन को बैठना चाहिए। बहस ये है कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाइज, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
2: केर जज्बाती न थे, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके न थो सके। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख्तियार हेठे सतह ते मुंतकिल थींदा। ॾखिण या उत्तर पंजाब ठहिण सां पंजाब जी हैसियत ख़तम न थींदी। ईअं ई सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स ठहण सां सिंधियुनि खे को पंहिंजी सुञाणप खसे न सघंदो। आउं हिन नौकरीअ ते रहां या न रहां, मामले तां पोइ ते न हटंदुसि। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो लाहौर में तक़रीब का ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न, पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तम करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे, मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुर्जे। आउं उन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
3: नवा सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि। नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां बि हयात पखिड़जी वेंदो? आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदर ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुर्जे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे अख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जे। पंजाब सिंध केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमानी हूंदी।
2: सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा तकरारी बयान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खां नोटिस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े जी सदारत हेठि इजलास दौरान वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। सिंध असेंबलीअ मां तारीख़ी ठहराउ मंज़ूर करण ते MPA सदर आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं मुराद अली शाह खे ख़िराज तहसीन पेश। इजलास में ख़बरदार कयो वियो त आइन में तरमीम लाइ वफ़ाक़ वटि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मौजूद न आहे, तंहिं करे जमहूरियत जे तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे। पीपल्स पार्टी 18 तरमीम, सूबाई ख़ुदमुख्तियारी, सिंध जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते धाड़ो हणु न ॾींदी। वफ़ाक़ी वज़ीरनि सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ तकरारी बयाननि खां पासो न कयो त समझो वेंदो इन साज़िश जे पुठियां वफ़ाक़ी हुकूमत शामिल आहे।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबह जो 10 to 10:30 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।